0: ठीक है। अरे वो धूल हुआ खेल, अरे खुद वो आना होगा यार। तो कर तो सके रहा नू, हम फिर वैसा वाल नू। अरे हम पका खेल ले, वो शुरू में ले खेले, अंत में चुम। तो कर धूल लगे था वाम नू, धूल फिर वैसा वाम नू।
1: अरे बाबू